प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव कि उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नू थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दें, सिर्फ उन्हानु देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हानु देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर मैं कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करदे हां कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे, अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसे ना किसे थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस आओ।

चलो मन, रहो घरे, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। उदो मन नू कमांड करो, मन नू आखो के मन रे थिर रहो, देर इज नो नीड टू गो एनी वेयर, देर इज नो नीड टू गो एनी वेयर, इत्थे रहो, बी प्रेजेंट। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, किते जान दी जरूरत नहीं, मत जा किते भी, इत्थे रह। फिर जदों मन जान लगे उदों इन्हां दोवां पंक्तियां नूं इस्तेमाल करना, मन रे फिर रहो मत कत जाही जियो। ए तुसीं तां ही कर सकोगे इफ यू आर वाचिंग द माइंड। जे तुसीं इफ यू हैव क्लोज्ड आई ऑन द माइंड, जदों मन च कोई ख्याल आएगा फौरन लाइन रिपीट कर दो कि मन रे फिर रहो, टिके रहो। सो तुसीं मन दे उत्ते सवार हो गए हो। जितना जितना इस अभ्यास नूं वधाओगे, जितना जितना इस अभ्यास नूं वधाओगे, उतना उतना मन जो है अंडर कंट्रोल आंदा जाएगा। थॉट्स अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, थॉट्स कट जाएंगे। थॉट्स का ही रौला है और थॉट्स दी डिस्टरबेंस है। जदों ओ हट जाएगी तो मन दे अंदर एक शांति होएगी, एक टिकाव होएगा, एक खालीपन होएगा। उस दे विच आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मन तो जो डीपर लैवल है आत्मा का, उस दियां ग्लिम्स आनी शुरू हो जाएगियां, उस दी दीदार होने शुरू हो जाएंगे। सो महाराज जी मन दे मुतलक सानू इस तरह समझांदे हैं, जपो तो एको नाम, नाम जपना है, पर नाम जपन दे वास्ते सब तो पहला भांडा तैयार करना है जो है बॉडी, और उस तो बाद समझ लो कि यह बहुत ही सूक्ष्म पढ़ाई है जिसके वास्ते तुहाडी सुरती का टिकाव बड़ा लाजमी है। पर अगर तुहाडे आले दुआले कोई शोर मचा रहा होवे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होवे, तो तुसी किस तरह पढ़ सकते हो? पढ़न दे वास्ते तुहानू क्वाइटनेस चाहिए है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पर यह रब्बी विद्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी तालीम है। और उत्थे मन ने अपना शोर मचाया होया है, मन दौड़ा फिरदा है। जिस तरह बच्चियां नूं जदों रौला पांदे हन सानूं कहना पैंदा ना टिक के बैठ जाओ, असीं बड़ा जरूरी काम करदे हां, इस तरह मन नूं कहना पैंदा है कि ऐ मन बच्चे टिक के बैठ जा, इस नूं टिकाना पैंदा है। महाराज जी ने मन नूं बच्चा आख्या है। सो सारे साडे अपने अंदर असीं बच्चे ही हां, क्योंकि जे मन साडे अंदर है तो मन नूं बच्चा आखदे हां। काया नगर एक बालक वसया, काया नगर एक बालक वसया, खिन पल थिर ना रहाई। एक काया नगरी दे अंदर जड़ा मन रूपी बालक है ना, एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा। जब ए एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखता है अंदर, तो सुरती किमें टिक जाए? सुरती काल पुरख वाहिगुरु नूं अनुभव किमें कर ले? उस दा बाणी दे विच अभ्यास दसदे हन कि मन रूपी बालक नूं आखो बैठ इत्थे, उस उत्ते ध्यान दे के रखो, उस दे उत्ते सवार हो जाओ। कि सारे दिन दे विच एक पल भी ऐसा ना होवे जदों कि तुहाडा तुहाडा ध्यान अपने मन वल ना होवे, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। पर ए मन नूं जो है इस नूं एक पल दे वास्ते भी अपनी अखां तो अपने ध्यान तो ओले नहीं करना, इसकी आदत बनानी है। आदत बनाते हैं दो चार महीनों के छह महीनों यह अभ्यास बहुत पक जाता है, बहुत पक जाता है जो रेगुलरली इस नूं करनगे। उदों ही आखना है कहां चलो मन रहो करे, क्योंकि यू विल एक्सपीरियंस एक थॉट मेरे अंदर चल रहा है एंड देर इज नो नीड फॉर दिस थॉट। अपने मन नूं तुसीं कहोगे भी क्यों की गल है, उत्थे तुसी मन दी जो ओ, ओ, एनर्जी है उस दे लई ऑब्सटैकल खड़ा कर दिता। यू हैव बिकम द ऑब्सटैकल फॉर द माइंड बिकॉज यू आर नाउ वाचिंग इट एंड ब्रेकिंग इट। तुहाडा देखना ही माइंड नू जो है वो खत्म करना शुरू कर देगा, सीज होना शुरू कर देगा। अते उस दे अंदर एक थॉट तो बाद कितनी कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा। जिन्होंने ये अभ्यास किया उन्होंने पता है एक थॉट नूं ओ वाच कर रहे हैं और उसनूं उत्थे ही उन्होंने खत्म कर दिता है। दैन उस तो बाद जो दूसरा थॉट है कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो टोटल साइलेंस का टाइम हुंदा है अंदर। और उस साइलेंस दे विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है।

आख्या जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख। कोई पाप ना कर, कोई ऐसा उपद्रव ना कर, तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आया है। ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे। जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे, चंगे गुण धारण कर। जे औगुण वेखने हन तां अपने अंदर जाती पा, ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है तां अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर। आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख, विचार कर। जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है, ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी। ए रिश्ता आदि पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं, ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी, ए माया नरक बन जाएगी। आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं, जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं, उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं। इसलिए बाबा फरीद जी कह

बिरद अवस्था एक मनुख की बिरद अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पास आके बेनती कीती, फकीर साईं मैनू मुक्ति दा उपदेश दियो कि मेरा संसार ते आउणा सफल हो जावे। ये गल सुन के उसनू समझाउण लई बाबा फरीद जी ने सलोक उचारण कीता, फरीदा जां तूं

मरन वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा। ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउने। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या भाई गुरु नानक दी बाणी कहदी है कि जो होनी है वो प्रबुल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता है वो होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपां किते काम ना आई है, तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया वो होके ही रहिंदा है। तां ए गुरु का लाल कहने लगा महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाव कर सकता है, कोई वड़ी गल नहीं। मैं ए गल नहीं मनदा, मनुख नू पता होवे मुसीबत आ रही है कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लेंदा है। जदों इसने ना मनी तां गुरु का सिख कहन लगा भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, अज तो 7 दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना है, जा तू अपना बचा कर ले जे कर सकदा है तां। महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ गए। घोड़ा उसके कोल सी ज्यों दौड़न लगा, रात दिन एक करके अपने वल्लों दूर तो दूर चला गया, पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उथे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। सात संगत बोलो श्री वाहे सवेर।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं कीता, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडा विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लेंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपया उन्हां नूं भई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओ नहीं जप सकदे।

सेवा लैन कोई संगत नवी आई हुंदी है केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई धरती ते जिन्ने अवतार आए

पंचमी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल तुसी साध संगत जी गल्लां भी कर सकते, कई हैरान हो जाएंगे।

हर गुण गावे सहज सुभाय, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दा पावन बचन साडे सन्मुख है। गुरदेव जी ने

प्यास लगी, पानी दी पाल कीती, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ताला।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए, बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल, कोकल अंब दे नाल।

मानसरोवर हंसला हंस जेड़े ने मानसरोवर नाल प्रीत करदे ने मानसरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल

सिद्ध मुनि ऋषि सारे चाहते नहीं ए परमेश्वर तेरे दर्शन हो जाए, पर बिरले काहू डीठला किसे बिरले नु ही तेरे

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ऐ परमेश्वर तू है कै ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अद्धी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मुंह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

स्वामी जी आए अमृत वेले, बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा, जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना है। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा सुर हो गया। स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को। भाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके

पर हार पाना भूल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद के दरवाजे के बाहर बैठे, उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकुट रख बैठे। ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी। जे ता हार मुकुट ला के पावा ताई शोभा वाली गल नहीं, मुकुट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा। ये चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकुट लाना ठीक नहीं ते मुकुट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा, किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंड खोल के हार गल विच पा के फिर गंड मार दियो। आवाज सुनी, स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे, मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे, मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे, स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम कहो, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे, कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

पूछे बामण आँख सुनावे। तन्ना ए चलत रोज देख दे ते पूछ गया ब्राह्मण नू इन्हां पत्थरां दी

चौकी ते रखे है। रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए। ठाकुर नो

तीसरा दिन चढ़िया ते धन्ना कह लगा हौ भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली हुण दस तैनू चाहीदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तैनू की चाहीदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख

परमेश्वर घर बन गए दाल आटा घ्यो ए भी मिल गए पैरी पाण वास्ते जुतियां सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए अनाज भी मिल गया गां ते मज भी मिल गई आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई सोहना घर बन गया पर एक चीज की कमी है भगवान कहन लगे धन्या ओ केड़ी कमी कहन लगे परमेश्वर ओ कमी है घर वाली दी भगत जी कहंदे ने घर की गेहन चंगी घर वाली आज्ञाकार तेरा नाम जपण वाली चाहिए भगत जी अपनी

मन क्यों बहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइयां आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कुछ संगत नवी आई हुंदी है, केवल बोल के लंघदे आ। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी धरती ते समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तो चले गए।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार च, गुरु नानक दे प्यार च। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सां वीर मैं अखां पहले खोलदियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तों मक्खण चुक के मुंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खण तू खा, मक्खण तू खा, तली उत्ते मक्खण पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उडिया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सतीक पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सतेज पातशाह, किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सतेज पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने, तारा भी कई तरह दिया हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गई न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देंदे ने। किसे गुरमुख ने लिखा है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची। मरदाना अगे ही चाहुंदा सी, 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले, की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही होई, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा

विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग समाद नागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेड बडानी विषमाद धरती विषमाद खानी विषमाद साध लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग विषमाद

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे, दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन। इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी। ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा, शूद्रां दा बहना उठना वखरा। जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने ए ऐलान कीता कि हिंदुस्तान दे विच इको ही धर्म रहेगा और वो है इस्लाम धर्म। औरंगजेब ने हिंदुआं नू जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कीता, मंदिर तोड़ने शुरू कीते। उस वेले कश्मीर दे ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार विच इन्हां ने बेनती की, महाराज हिंदू धर्म खतरे विच है,

अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होए, उस वेले भाई जैता उस जगह खड़ा सी, वो गुरु तेग बहादुर साहब का शीस लैके दिल्ली तो लुकदा छिपदा आनंदपुर साहब पहुंचया। ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है, भाई जैते नू गल ना लगाया ते पुछया, भाई जैता जिस वेले साडे पिता शहीद होए, उस वेले दा अखी डिठा सानू हाल सुना। भाई जैते ने कहा, पातशाह मुगला ने यह कहा सी, अगर कोई गुरु का सिख है ते गुरु का शीस और ताड़ लै जावे, पर कोई सामने ना आया, सारे डरदे सन, गुरु नूं मन्नण वाले ते बहुत सन, पर सामने कोई ना आया। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गर्ज के कहा, मैं एहो जिहा रूप सिखां नूं देवांगा कि हजारां विच खलोता होया भी वो अपने आप नूं लुको ना सकेगा, किधरे जुल्म हुंदा वो देख ना सकेगा। उस वेले गुरु साहब ने फैसला किया कि मैनूं हुण सिखां नूं नवां रूप देना पवेगा। ये हिंदुस्तान दे लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, मुगलां दे गुलाम ने और जातां पातां विच वंडे होए ने। अगर इन्हां नूं अणख वाला जीवन देना है तो सारियां तों पहला जात पात खत्म करनी होवेगी। इस मकसद नूं लै के विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब बड़ा वड्डा इकट्ठ कीता। उस इकट्ठ दे विच 80,000 के करीब संगत इकट्ठी हुई और गुरु साहबां ने सिखां कोल सिर मंगे, पांच सिर मंगे, और ये जेड़े पांच सन कोई उच्चियां जातां दे नहीं सन, कोई जट सी, कोई नाई, कोई छीबा, कोई झीवर। सतगुरां ने इन्हां जातां नूं मिला के एक नवां रूप दिता, खालसा। और इन्हां नूं जद अमृत छकाया ते कह दिता उन पंजां नूं, जिहड़ा जट सी उहनूं कहा तू हुण जट नहीं, जिहड़ा नाई सी उहनूं कहा तू हुण नाई नहीं, जिहड़ा छीबा सी उहनूं कहा तू छीबा नहीं। इस तरह बाकियां नूं वी कहा कि तुहाडी हुण कोई जात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, तुसी एक बराबर हो। अज तों तुहाडा नाम सिंह है, ते सिंह कहंदे ने शेर नूं, तुसां शेरां दी तरह जीना है, देश कौम दी गौ गरीब दी रक्षा करनी है, और जात पात तुसां नहीं मननी। तुहाडा इक्को ही धर्म है, वो है मानस की जात सबै एक है पहचान। पंजां नूं

मैं देखना है ए हरि सिंह नलुआ कौन है जिन्हें पठाना दी धरती ते आके कब्जा किया है, क्योंकि पठाना नू अज तक कोई हरा नहीं सकया। ए सुन के गुल खान कहन लगा।

और हरि सिंह नलुआ दा जिथे तंबू लगा उथे जा पहुंचे। अगे बहरे ते दो सिंह खड़े ने त्यार बर त्यार, उन्होंने बाणों नू देखिया

सिंह कहन लगे बीबी कोई जरूरी काम है। कहन लगी हां। एक सिंह कहन लगा तू इत्थे खड़ी हो मैं पूछ के आया। थोड़ी देर बाद पहरेदार सिंह वापस आया। कहन लगा बानो तंबू अंदर चली जा, हरि सिंह नलवा इंतजार करते।

अगर मेरा कोई पुत्र होवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलां विच की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उसकी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा चली जा, तू मैनु डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैण वखाण। जद ए गल कही बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने इकता ना मारे, कहन लगी, हरी सिंह मैं सुनया कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़िया, ये भी सुनया कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, आज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे हरि सिंह कहन लगे, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरि सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों